0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
10: This is a public service announcement.
11: The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: Faza 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप.
16: You are listening 97.1 FM.

0: Zuckerfest.
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

0: टीचर थोड़ा जाना फरीद।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

कोई से तुमको देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सा

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
6: It's
7: music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

0: to be.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: It's commercial time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
8: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
14: You are listening 97.1 FM.
15: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM.
16: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
17: 97.1 FM.
18: यही है आपका।
14: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
11: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beats.
9: Wow, FM.
10: Only tune super hit channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

Assalamualaikum, Namaste, Satsyakar, a very beautiful, breezy and fabulous morning to all my wonderful listeners tuning in. मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा, वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पर. जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट. सो इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप मिलकर अब से लेकर ठीक दो घंटे तक. यानी अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार. तो इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन 01157100971. ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. सो आप जल्दी से जाइए इस नंबर पर जाकर अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना लिखकर भेज दीजिए. हमेशा से मुझे इंतजार रहता है कि मैं ये जानूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं. इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इजीली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. सो इंतजार किस बात का है, अभी जाइए और जाकर फौरी तौर पर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें.

Hey to listeners, welcome to the Wednesday, 3rd June 2026. Can you believe it? June ka pehla hafta itni tezi se aage badh raha hai. Kal ka Tuesday to guzar gaya hai aur aaj hum enter ho chuke hain is beautiful se mid-week vibe mein. June ki dhoop thodi si tez zarur hai lekin aapki energy aur aapki host usse bhi zyada bright होनी चाहिए. तो बस अगर आप गाड़ी में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या किचन में खड़े हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं, चिल आउट, रिलैक्स, क्योंकि अगले दो घंटे होने वाले हैं आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लम्हात, बिकॉज टुडे इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग यू. जी तो लिसनर्स, शो का बाकायदा आगाज करते हैं, करेंगे बहुत सारी गपशप, बहुत सारी चिट चैट, सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें. लेकिन शो का स्टार्टअप होगा एक खूबसूरत से साउंड ट्रैक से, सो सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक. ट्रैक के उस पार आपसे होती है मुलाकात, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए.

वेल लिसनर्स, उम्मीद करते हो इस खूबसूरत से साउंड ट्रैक ने आपकी सुबह को मजीद खूबसूरत बना दिया होगा और आपके माइंड को भी थोड़ा फ्रेश कर दिया होगा। चलिए आज के इस हसीन सी खूबसूरत से दिन का आगाज करते हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग कोट से। सो आज का हमारा कोट ऑफ द डे ये कहता है, डू नॉट ब्लेम द शेडोज फॉर बीइंग डार्क, इंस्टेड लुक टूवर्ड्स द सन एंड रिमेंबर दैट यू आर द वन होल्डिंग द लाइट।

चलिए लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हमारा आज का कोट ये कहता है कि अंधेरों को इस बात का दोष मत दीजिए कि वो काफी ज्यादा डार्क है या काफी ज्यादा गहरा है, बल्कि सूरज की तरफ देखें और हमेशा याद रखें कि आपके अंदर वो रोशनी मौजूद होती है जो हर अंधेरे को खत्म कर सकती है। बेसिकली माय लवली डीवाज, हम अक्सर क्या करते हैं, जब जिंदगी में कोई छोटी सी परेशानी आती है या कोई दिन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजरता, तो हम हालात को बुरा भला कहते हैं और हम सारा ब्लेम डाल देते हैं अपनी सिचुएशंस पे। वी कॉल इट द ब्लेम गेम। लेकिन एक असली डीवा वही है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने चेहरे पर एक स्माइल रखती है, अपनी उम्मीद को नहीं जाने देती। चूंकि अब जून का नया महीना स्टार्ट हो चुका है, नए टारगेट्स हैं, नए एम्बिशंस हैं, तो पुरानी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए और अपनी जिंदगी की रोशनी को बहाल करना चाहिए। ये तो बेसिकली हमारा जो आज का कोड है वो ये कहता है कि समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस तो ऐसे फिर आते रहते हैं कि जहां इंसान को लगता है कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, कुछ भी इंसान हैंडल नहीं कर सकता। बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव अ कवरेज। सो आप कुछ भी कर सकते हैं और हर एक इंसान के अंदर हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सोल्यूशंस मौजूद होते हैं। बस आपको जरूरत होती है फिगर आउट करने की, अंडरस्टैंड करने की, समझने की कि आखिर आप किस तरह से इसका सलूशन निकाल सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये कोट बहुत अच्छा लगा होगा और इस कोट से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव वाइब जरूर आएगी। सो कोशिश किया करें कि अपने दिन का स्टार्ट पॉजिटिविटी से किया करें और जितनी भी जो आपके अंदर डीमोटिवेशन होती है, ना उम्मीदी होती है, इसको बिल्कुल खत्म कर दें। क्योंकि जब आप डीमोटिवेट हो जाएंगे तो कभी भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। सॉल्यूशंस तभी निकलते हैं जब आप खुद पर फोकस करते हैं और खुद पर बिलीव करते हैं। वो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे, उनकी ये एक लाइन थी कि उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाए, एज मच कि अगर मैं खुद पर बिलीव करता हूँ, खुद पर यकीन रखता हूँ, तो मैं हर प्रॉब्लम को, हर डिफिकल्टी को, हर हर्डल को सॉल्व कर सकता हूँ। सो इसी तरह हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमें भी चाहिए कि हम खुद पर यकीन रखें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में खुद फोकस करें। तो उम्मीद करती हूँ ये कोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे।

जी तो लिसनर्स, इसी चीज़ को लेते चलते हुए मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी लिसनर्स से पूछा जाए। जैसा कि आज है वेनसडे मिडल ऑफ द वीक, सो इस वीक के आपके क्या रेजोल्यूशंस थे जिन्हें आपके ख्याल से और आपके अकॉर्डिंग आपने अब तक कितना फुलफिल कर लिया है और कितने प्लान्स और गोल्स अभी बाकी हैं। सो जल्दी से जाइए, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, सो आप इस नंबर के जरिए से मुझे बता सकते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं।

जी तो लिसनर्स, बात करेंगे अब थोड़ी सी इधर उधर की। जैसे कि हमने बात की मोटिवेशन के बारे में और हमने बात की कि सेल्फ बिलीव के बारे में, इस तरह से हम बात करते हैं थोड़े से आपस की रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स के बारे में भी। जैसा कि समटाइम्स सम सिचुएशंस में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को जो चीज़ अफेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, वो है सैलरी। बट ऑन द अदर हैंड द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी में ग्रो करना चाहते हैं, सो आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास के लोगों के साथ रिलेशंस और बॉन्ड्स भी अच्छे होने चाहिए। सो कीप इन माइंड इन दिस पॉइंट। सो अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक कमर्शियल ब्रेक का, चलते हैं इस ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और कमर्शियल ब्रेक से उस पार आपसे होती है दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM को सुनते रहिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। चलिए तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की मोटिवेशन की, सेल्फ बिलीव की और कि किस तरह से आप अपने बॉन्ड्स को दूसरों के साथ अच्छा करके, दूसरों के साथ स्ट्रांग करके सोसाइटी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे और अकेले हम बहुत आगे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सच है। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स नॉट ट्रू, बट अगर देखें तो सोसाइटी में हम सब इंसानों को कहीं ना कहीं सम पॉइंट्स पर दूसरों की सपोर्ट की, दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी में हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ ही कोई भी सक्सेसफुल काम कर सकते हैं, कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो जो लोग ये सोच रखते हैं कि वो अकेले सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं भी थोड़े पीछे रह जाते हैं। सो आपको चाहिए कि आप अपने आसपास एड किट की कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएं, अच्छे बॉन्ड्स बनाएं, ताकि जब आपको मुश्किल वक्त में कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत हो, सो आपको पता हो कि कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को इस तरह से भी देखते हैं कि वो लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं। बड़े फ्रेंड सर्कल्स अच्छे होते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके फ्रेंड्स हमेशा वही होते हैं जो कि मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट करते हैं। सो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा से कि आपके फ्रेंड्स क्वालिटी वाइज अच्छे हों, ना कि क्वांटिटी वाइज। अच्छा, अब जब मैं थी कॉलेज टाइम में, ठीक है, सो अब मेरे कॉलेज में क्या होता था कि बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते थे, ठीक है, और उनको लगता था कि शायद के बड़े ग्रुप्स के साथ इंसान अच्छे से हैंग आउट कर सकता है, इंटरटेन होता है, बोर नहीं होता। बट मैं हमेशा से उस टाइम पर बिलीव करती थी कि आपका एक या फिर दो ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जो लाइक आपके अच्छे दोस्त हों और आपकी सपोर्ट सिस्टम में बहुत हेल्प करें। तो मैं हमेशा से इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ और आज भी मेरे तकरीबन 3-4 ही दोस्त हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत अच्छे हैं, और अगर मुझे कभी भी किसी की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आई नो कि वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो इस तरह के बॉन्ड्स बनाने चाहिए, तभी इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि जो आपका सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में वैल्यू रखता है। समटाइम्स आपको केयरफुली अपना सर्कल चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाज़ुकात आप ही के जो दोस्त होते हैं वो आपसे जेलस हो रहे होते हैं, वो आपको उस तरह से इनकरेज नहीं कर रहे होते, सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और आप खुद को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और खुद के बारे में मतलब अपना परसेप्शन थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। सो बी केयरफुल वाइल मेकिंग फ्रेंड्स। सो ये थी आज की थोड़ी सी छोटी सी एडवाइस, आई थिंक सो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अभी वक्त है शो में एक म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का। सो बेसिकली हमारी एक और आरजे सल्लू की रिक्वेस्ट, सॉरी मतलब उनकी फरमाइश पर यह गाना मैं अपने शो में शामिल करने जा रही हूँ, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो सबकी रिक्वेस्ट पूरी करती हैं, सबकी विशेस पूरी करती हैं, सो उनका फेवरेट सॉन्ग भी शो में शामिल किया जाए। तो जी सुनते हैं ये साउंड ट्रैक और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये साउंड ट्रैक कैसा लगा।

ठीक है, तो लिसनर्स काफ़ी बात कर ली मोटिवेशन के बारे में, अब जरा बारी आती है किचन की। सो आज की रेसिपीज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी हटके हैं, क्योंकि हम जैसा कि अभी अभी फेस्टिव सीजन गुजरा है ईद उल अज़हा का, सो बहुत सारे लोगों के घरों में वही एक रूटीन चल रही होगी जिसपे बहुत ज़्यादा मीट बन रहा होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज उन तमाम तर लिसनर्स के लिए कुछ ऐसा बनाएं जिनको मीट बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर वो तमाम तर लिसनर्स जो वेजिटेरियन हैं। सो जल्दी से आप अपनी कॉपी, डायरी या फिर पेंसिल को रेडी कर लें, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो तमाम तर इन्ग्रीडियंट्स, ताकि कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी तवा पनीर मसाला। ठीक है, अब बेसिकली वो तमाम तर लोग जिनको मीट पसंद नहीं होता या वो वेजिटेरियन होते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग पनीर को इस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम मीट को देखते हैं। सो हमारे और उनके परसेप्शन में बस इतना सा फ़र्क होता है कि वो लोग पनीर बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और हम मीट बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। सो मैंने सोचा कि आज ज़रा अपने वेजिटेरियन लिसनर्स को टारगेट करते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए पनीर, जो कि हमने बिल्कुल क्यूब साइज में कट कर लेना है। ठीक है, 250 ग्राम्स हम पनीर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडली हमें चाहिए प्याज, हम एक से दो अदद यूज़ कर सकते हैं। अगर प्याज हमारा दरमियाने साइज का है तो दो इनफ, और अगर प्याज थोड़ा बड़े साइज का तो एक ही काफ़ी है। और अब बारी आती है टोमेटोज़ की। सो टोमेटोज हमने दो अदद यूज़ करने हैं और हमने इनको बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लेना है। ठीक है, अब बारी है कैप्सिकम। कैप्सिकम भी हम एक अदद यूज़ करेंगे जिससे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 अदद, बटर या फिर हम कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबल स्पून्स। अब आ जाती है स्पाइसेस की बारी, जो कि हमारी हर रेसिपी में जान डालते हैं और रेसिपी को बनाते हैं डिलिशियस और मज़ेदार। सो ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, और नमक हसबे ज़रूरत

खाने में मिर्चें तेज नहीं है तो समझ लो खाना फीका है, और खाना फीका है तो समझ लो चाहे प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो, ओवरऑल लुक जितनी अच्छी हो, हमारे लिए वो माइनस ही होता है। सो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है लेमन जूस और हरा धनिया। अच्छा, अब लेमन जूस को हम लास्ट में ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, यानी कि ऊपर से हम उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देंगे ताकि टेस्ट इन्हेंस हो, और हरा धनिया भी हम गार्निशिंग के लिए लास्ट में ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी ओवरऑल लुक है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, वो ब्यूटीफुल दिखे। क्योंकि कहा जाता है कि खाना जो है वो हमेशा आपकी आंखों से गुजरता है, अगर आपको दिखने में वो आई कैचिंग लगेगा, डिलीशियस लगेगा, तभी आपका दिल करेगा खाने का। और अगर वो दिखने में ही अच्छा नहीं दिखेगा तो आई डोंट थिंक सो कि आप कोशिश करोगे या ट्राई करोगे इसको ट्राई करने की। सो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ताकि अगर कोई बिगिनर भी ये शो देख रहा है और चाहता है कि इसको ट्राई करे तो वो इसको ईजिली बना ले।

सो तो लिसनर्स, अब बारी है स्टेप बाय स्टेप कुकिंग फॉर सीजे की. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक तवा फ्लैट तो लिसनर सबसे पहले हमने एक वाइट पैन अच्छी तरह से गर्म कर लेना है. उसमें हमने 1 टेबलस्पून बटर और थोड़ा सा ऑयल इनको शामिल कर देना है. ठीक है, अब जो हमने पनीर के क्यूब्स कट करके रखे थे उसको हम उसी पैन के ऊपर दोनों तरफ से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, यानी कि तब तक कि वो बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए. ठीक है, हमारा जितना भी पनीर है वो सब. ठीक है, जैसे ही वो बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उन्हें निकाल के रख लेना है. ठीक है, अच्छा ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज जो पनीर है वो रबर जैसे टाइट हो जाएगा. अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पनीर को ज़्यादा कुक करेंगे तो जूसी बनेगा, बट इट्स रॉन्ग. आपने पनीर को बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि आपका जो पनीर है वो बिल्कुल टेंडर रहे, बिल्कुल सॉफ्ट रहे. ठीक है, सेकेंडली अब आपने इसी पैन के अंदर जो बचा हुआ ऑयल या फिर बटर था, ठीक है, इसमें आपने बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर लेनी है. ठीक है, इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है ताकि उसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए. ठीक है, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और बारीक कटी हुई मिर्चें शामिल करें और 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनें ताकि उनकी जो प्यारी सी खुशबू है वो हमारी रेसिपी के अंदर आने लगे. इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर

साथ ही नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और वो तमाम तर मसाला जात जिन्हें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में लिखवाया था, आपने वन बाय वन करके शामिल कर देना है, ठीक है। अब टमाटर को चम्मच से आपने अच्छे से पकाना है जब तक कि वो बिल्कुल नरम हो जाए और ऑयल अलग से दिखने लगे, ठीक है। अब इसमें चटपटे मसाले, कटी हुई शिमला मिर्च और जीरा पाउडर शामिल कर लें। शिमला मिर्च को सिर्फ 2 मिनट पकाना है ताकि जो उसका क्रंच है वो बिल्कुल बरकरार रहे। अगर ज़्यादा पका देंगे तो फिर आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत सौगी हो जाएगी और वो ना ही खाने में अच्छी लगेगी और ना ही ओवरऑल प्रेजेंटेशन में अच्छी लगेगी, ठीक है। सो आखिर में फ्राई किए हुए पनीर शामिल करें, ऊपर से गरम मसाला, कसूरी मेथी हाथ से मसल कर अच्छी तरह से शामिल करें, क्योंकि बेसिकली मुझसे ना बहुत सारे लिसनर्स का भी एक क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि आप सबकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देती हूँ। सो बेसिकली हम कसूरी मेथी को क्यों शामिल करते हैं अपने खानों के अंदर? हम कसूरी मेथी को अपने खानों में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि वो हमारे ना खाने में टेस्ट और अरोमा को इनक्रीज़ करती है। सो आपने इसको बिल्कुल टाइनी अमाउंट सा ऐड करना है क्योंकि ये आपकी टेस्ट को इन्हेंस करती है। इसके बिना भी आपकी रेसिपी बन सकती है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्रेडिएंट्स शामिल करें जो कि आपके खाने में टेस्ट को बरकरार करें, ठीक है। सो आपने इन सब को शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, और ज़रा हल्का हाथ रखना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिक्सअप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पनीर डैमेज हो सकता है। अब बारी आती है जी हमारी फाइनल लुक की, ओवरऑल प्रेजेंटेशन की। सो ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज करें और जो धनिया आपने गार्निशिंग के लिए कट करके रखा था उसे ऊपर से डाल दें और टडा, अब आपकी रेसिपी हो गई तैयार। बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल इजी सी और बिल्कुल बेसिक सी। सो अब आप इसको चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं, चाहें तो आप इसे नान के साथ खा सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस। तो जी वो तमाम तर लिसनर जो सोच रहे थे कि क्या रोज़ कुछ ना कुछ मीट में बनाना पड़ता है, मीट के अलावा तो कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं होते, उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, आई थिंक सूटेबल है। सो जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मेन कोर्स। होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब, जहां अब कुछ चटपटा, कुछ तीखा, कुछ नमकीन तो हो गया है, अब बारी आती है कुछ मीठे की, क्योंकि हमारा खाना, हमारा दस्तरखान अधूरा है मीठे के बिना, और मीठा ना हो तो ज़िंदगी में टेस्ट नहीं आता। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कुछ चटपटा खाती हूँ, कुछ स्पाइसी खाती हूँ, तो उसके बाद फौरन से ना एक मीठे की क्रेविंग होती है। सो आज लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी मीठी रेसिपी जो कि बहुत सिंपल सी है, क्योंकि आई नो कल मैंने जो रेसिपी आपसे शेयर की थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी लेंथी भी थी, बट ट्रस्ट मी अगर आप उसको उसी स्टेप्स के फॉलो करें तो आपका चीज़ केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और एक लिसनर ने मुझसे शेयर भी किया था अपना रिव्यू कि उनको वो चीज़ केक कैसा लगा। सो आप सब भी उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और चलिए आज की ज़रा सिंपल सी रेसिपी की जाने बढ़ते हैं।

चलिए तो लिसनर्स, आज की जो हमारी स्वीट मीठी रेसिपी है उसमें हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड एंड क्रीमी फ्रूट चाट। क्योंकि जहाँ बात हो मीठे की, फ्रूट चाट इज़ द बेस्ट रेसिपी, प्लस इट्स हेल्दी, इट्स टोटली हाइजीनिक। सो इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हैं, इजीली मार्केट में आप 2 कप ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम चाहिए आपको 200 ग्राम्स, मायोनीज चाहिए आपको 3 टेबल स्पून, पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर चाहिए 2 टेबल स्पून, काले मिर्च पाउडर चाहिए 1.5 टेबल स्पून और चाट मसाला चाहिए 1.5 टेबल स्पून। वैसे अगर आप चाहें तो आप चाट मसाला स्किप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी जो फ्रूट चाट है वो बिल्कुल स्वीट और बिल्कुल मीठी बने, ठीक है, तो आप इस मसाले को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रंच, थोड़ा सा डिफरेंट फ्यूजनल टेस्ट ऐड करना चाहते हैं सो इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। ट्रस्ट मी, सुनने में तो थोड़ा वियर्ड कॉम्बो लगता है कि कहाँ फ्रूट्स और कहाँ मसाला, बट ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी तो लिसनर्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। आप सभी से शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। तो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, और ब्रेक से वापसी पर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रही हैं द दीवार डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 एफएम में। जी तो लिसनर्स, रेडियो फजा 97.1 एफएम है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलता है एक ऐसा फ्यूजन जिसमें आपको अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिलती है, अ लिटिल बिट कम्युनिकेशन होती है मेरी और आपकी, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का डोज भी चलता रहता है। सो हमारी कोशिश यही होती है कि आप

जी तो लिसनर्स, काफी गपशप हो चुकी है, अब वक्त है शो में एक अदद म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का। तो जी हमारी एक लिसनर्स की फरमाइश है कि हम इस गाने को अपने शो में शामिल करें। सो अब लिसनर से पूछते हैं कि उनको ये गाना सुनकर कैसा लगता है। तो आप और हम भी मिलकर तब तक के लिए ये म्यूजिकल ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक से वापसी पर फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा और अपनी उन लिसनर से भी पूछते हैं जिनके कहने पर हमने ये साउंड ट्रैक ऐड किया था कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, जरूर बताइएगा। ओके समरीन, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, सो आप इस नंबर के जरिए मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। जी तो लिसनर, जैसे कि अभी हमने द स्पाइस किचन में इतने लजीज रिफ्रेशिंग रेसिपीज की बात की, लेकिन दस्तरखान से उठने के बाद जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो क्या नजर आता है। जून का महीना चल रहा है, धूप काफी तेज है और गर्मी का जो सिलसिला है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। कहा जाता है, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ, वी कॉल इट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अक्सर हम सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम लोग हैं। लेकिन लिसनर्स, असली लोग वही होते हैं जो सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने आसपास, अपनी मदरलैंड और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे कुछ उन छोटी छोटी हॉबीज की, कुछ छोटी छोटी रूटीन्स की जिससे हम दुनिया को दोबारा से खूबसूरत बना सकते हैं, हंसी बना सकते हैं। सो क्या आपको पता है कि जब हम रोजाना अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके तबाही की तरफ जा रहा है। चलिए, जैसा कि आज जून का नया हफ्ता जो हमने स्टार्ट किया था उसका आज तीसरा दिन है, सो हम अपने कुछ रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं जिनसे हम अपने इन्वायरमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं। सो बेसिकली हम जब भी बाजार जाते हैं सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हम प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करें, जबकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वही सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। कहा जाता है प्लास्टिक जो है वो हमारी इन्वायरमेंट को इस तरह से डैमेज कर रहा है कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो तक डैमेज हो रही है और हमारी जो ज़मीन है वो जस्ट फॉर दिस प्लास्टिक इतनी डैमेज हो चुकी है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे, खूबसूरत और ज़रखेज थे, लेकिन चूंकि हमने क्या किया, कॉन्टीन्यूसली प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, फिर उन प्लास्टिक के बैग्स को हमने इधर उधर फेंक दिया, अपने सोसाइटी का, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा, और जब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हमारी ज़मीन के अंदर कंज्यूम होता चला गया तो उसने हमारी ज़मीन को बंजर कर दिया। सो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, इन्वायरमेंट को साफ रखें, क्लीन रखें, सो सबसे पहला रेजोल्यूशन तो हमें यह सेट करना पड़ेगा कि आज से हम प्लास्टिक बैग्स को बहुत कम यूज़ करेंगे। आई नो कभी ना कभी कहीं ना कहीं चले जाओ ज़रूरत पड़ जाती है प्लास्टिक को यूज़ करने की, बट हमें चाहिए कि हम कपड़े के बैग्स बनाएं, कपड़े के बैग्स यूज़ करें, जहाँ भी जाएं शॉपिंग करने, मार्ट में या फिर ग्रॉसरी करने, सो हम अपने उस बैग को कैरी करें जिसे हमने कपड़े से बनाया है। इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि जो हम चीज़ें खरीदेंगे हमारी चीज़ें भी सेफ रहेंगी, टोटली हाइजेनिक रहेंगी, और सेकंड फ़ायदा क्या होगा कि जब हम प्लास्टिक बैग यूज़ ही नहीं करेंगे तो इधर उधर फेंकेंगे नहीं तो इन्वायरमेंट किस तरह से डैमेज होगा। हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मली लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हमारी इन्वायरमेंट, हमारी ज़मीन गंदी हो रही है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे इस अर्थ को, हमारे मदरलैंड को डैमेज कर रही हैं। सो मैंने सोचा कि अब से हम डेली एक ऐसा रेजोल्यूशन सेट करेंगे जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट खूबसूरत बनेगा तो मौसम बैलेंस होगा, और जब मौसम बैलेंस होगा तो आप खुद ही फील करोगे कि गर्मी और सर्दी में फर्क आपको खुद बहुत नजर आ रहा है। सो आज का हमारा रेजोल्यूशन क्या है कि हम प्लास्टिक बैग्स बहुत कम यूज करेंगे। तो लिसनर्स, इस बारे में आपका क्या कहना है, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का नंबर, सो इस नंबर के जरिए आप जाकर मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, अपने तासुरात।
और आज के रेजोल्यूशन के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने सोचा कि डेली बेसिस पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, इधर उधर की चिट चैट तो चलती रहती है, तो क्यों ना हम ऐसी बातें करें जिनसे सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा हो और लोगों के अंदर कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का जज्बा आए।

जी तो लिसनर्स, आई थिंक काफी ज्ञान हो चुका है और हमने काफी सीरियस बातें कर ली हैं। चले आइए जरा थोड़ी सी हट के थोड़ी सी अपने दिल की बात करते हैं और मुझे बताइए कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कोई टेंशन चल रही है, किसी उलझन का शिकार है, तो मुझसे शेयर कर लीजिए, क्योंकि समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे दोस्त की जो हमें समझे, हमें अंडरस्टैंड करे। मैंने देखा है कि जो लोग जिनके जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं वो लोग उतने ही मतलब अकेले और लोनली होते हैं। बट आई एम फील वेरी ग्लैड कि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और मैं जहाँ भी चली जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो लिसनर्स, आपको एक मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करती हूँ। बेसिकली आजकल लाइफ इतने बिजी हो चुकी है, डेली बेसिस पे इतने काम करने पड़ते हैं मुझे, इधर उधर जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर प्रोजेक्ट्स और फिर ऑफिस, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ को हमें टाइम की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, हमारी दोस्ती होती है, इन्हें भी हमारे टाइम और तवज्जो की तो फिर जाहिर सी बात है ज़रूरत होती ही होती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया जाए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जो काफ़ी टाइम से हम नहीं मिले, हम आपस में मिलें, कुछ मिल बैठ के बातें करें और गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सो कल मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कब तक तुम फ्री हो जाओगी, हम वी विल बी हैंग आउट लेटर। सो मेरी फ्रेंड कहती है कि आजकल तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, सो हम स्टार्ट करेंगे और हम मिलेंगे। सो आई फील लाइक मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली हम मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो लोगों को तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जब से हम कॉलेज टाइम के बाद काफ़ी अरसा हो गया है, अब जब भी हम मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं। और किसी ने कहा था कि जब आप किसी के साथ पढ़ते होते हो, वो बॉन्ड और उसके बाद काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बट स्टिल इट्स बीन मोर देन 7 ईयर्स, बट स्टिल आज भी मेरा और मेरी दोस्त का जो बॉन्ड है वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, और हम आज भी सब एक दूसरे से शेयर करते हैं और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि हम डेली बेसिस पर मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो मैं चाहती हूँ कि लिसनर्स, आपका और मेरा बॉन्ड हमारा साथ भी हो कुछ इस तरह से कि भले ही हम लोग फिजिकली साथ ना हों, लेकिन हम लोग मेंटली एक दूसरे से इतना अटैच हों कि आपको मेरी प्रेजेंस और एब्सेंस फील हो और इसी तरह से मुझे भी आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस फील हो। सो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके फीडबैक की। सो लाजमी मुझे अपना फीडबैक दिया करें और बताया करें कि आपको मेरा शो कैसा लगता है और आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं, कौन सा साउंड ट्रैक मुझे प्ले करना चाहिए जो आपके फेवरेट हैं, ताकि हमारा इसी तरह से साथ बरकरार रहे। आई थिंक लिसनर्स, काफ़ी हमने ज्ञान की बातें तो कर ली, चलिए ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक मस्ती को ऐड करते हैं। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक और साउंड ट्रैक से वापसी पर फिर से यही गपशप का सिलसिला जारी करेंगे।

लिसनर्स, इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
0: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। डियर लिसनर, जैसा कि आपको और मुझे साथ में तकरीबन हो चुके हैं अब 2 घंटे करीब, और बातें करते करते गुफ्तगु करते हुए वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जितना मैंने इस गुफ्तगु को एंजॉय किया है आप सभी ने भी एंजॉय किया होगा। डियर लिसनर, जहां अब हमने काफ़ी बातचीत कर ली है, चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि हमारी तमाम तर डीवास का फेवरेट टॉपिक है, यानी कि ब्यूटी एंड मेकअप। आप सभी ने नोट किया होगा कि जहाँ पर भी हों फीमेल्स, चाहे हों वो एशियन फीमेल या फिर हो ब्रिटिश, सभी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती हैं, वो होती है उनकी ब्यूटी, उनकी स्किन और उनके हेयर्स। सो एवरीबॉडी, हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें, सुंदर दिखें। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इट्स 2026, सो लाइफ बिकम्स रियली फास्ट। डेली बेसिस पर इतने काम करने पड़ते हैं, इतना वर्क करना पड़ता है, इंसान इतनी हेक्टिक रूटीन की वजह से थक जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हैवी किस्म के स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो किया जाए। सो मैं लाती हूँ अपनी तमाम तर डीवास के लिए ऐसी सिंपल ब्यूटी टिप्स जो आपको खूबसूरत तो बनाती हैं, साथ ही साथ खूबसूरती भी इंक्रीज करती हैं और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं करती है। तो हमने कल बात की थी स्क्रब के बारे में कि किस तरह से आप अपनी टैनिंग को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि किस तरह से इंस्टेंटली आप ग्लो दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ब्यूटी, कुछ मेकअप टिप्स के हवाले से। जैसा कि डेली बेसिस पर अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड आई नो बहुत सारी डिवाइस ऐसी होंगी मेरी तरह जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होगी, एक्नी प्रोन स्किन होगी, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि किस तरह जब ऐसा मौसम आ जाता है तो आपको कितने इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप कुछ भी लगा लो, मेकअप वगैरह कुछ भी आपके फेस पर फिक्स नहीं रहता। तो आप सभी की इन्हीं समस्याओं को माइंड में रखते हुए आज लाई हूँ आप सबके लिए ऐसी ब्यूटी टिप्स जो ना सिर्फ आपको खूबसूरत बनाएंगी बल्कि आपकी स्किन को, पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगी। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन पर हम अमल करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पर्सनली अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि इट डजेंट मैटर कि मैं कैसे दिखती हूँ, मेरी ओवरऑल लुक क्या है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या है, जस्ट कि मैं अपने काम पर फोकस करती थी और जस्ट सिर्फ काम से काम रखती थी। बट देन देर इज़ समवन हु रियलाइज मी कि इंसान अगर खुद पर थोड़े से तवज्जो दे तो इंसान काफ़ी हद तक ग्रूम हो सकता है, चेंज हो सकता है। और ब्यूटीफुल तो हम सभी होते हैं, बस ज़रूरत होती है कि हम अपने अंदर की ब्यूटी को जांचें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर को यूज़ करें। सो जैसा कि मुझे किसी ने मोटिवेट किया तो मैं अपने तमाम तर लिसनर्स को मोटिवेट करती हूँ, वैसे लड़कियों के साथ साथ लड़कों आपको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो आपको भी स्किन केयर करनी चाहिए। सो जी, फिलहाल तो फीमेल्स के लिए लाई हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स। हाँ, तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे कि इंस्टेंट ग्लो की तो बात हो गई, टैनिंग को रिमूव करने की भी बात हो गई, अब बात करते हैं चंद ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो कि इंस्टेंटली आपको ग्लो देंगे प्लस उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब डेली बेसिस पर इतना ज़्यादा गर्मी होती है, हमारा दिल नहीं करता कि हम प्रॉपरली मेकअप करें, हैवी फाउंडेशन या फिर बेस यूज़ करें। सो आप सबके लिए मैं इसका एक सोल्यूशन लाई हूँ। तो जैसे ही इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को यूज़ करना चाहिए टेंटेड सनस्क्रीन, क्योंकि अब मौसम ऐसा आ चुका है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो आप अपनी फाउंडेशन को स्किप कर दें, हैवी बेस को भी स्किप कर दें और टेंटेड सनस्क्रीन यूज़ करें, क्योंकि इट गिव्स यू बोथ ऑफ बेनिफिट्स। इससे सबसे पहले तो आपकी स्किन जो नहीं है वो सन से प्रोटेक्ट होगी, सेकेंडली स्किन जो नहीं है वो अनइवन जो टोन है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि अब ऑफिस गोइंग गर्ल्स को ज़रूरत होती है कि जो डिस्कलरेशन है या फिर अनइवन स्किन है वो ज़रा सी इन्हेंस दिखे, ज़रा सी अच्छी दिखे। सो आप क्या यूज़ करें, टिंटेड सनस्क्रीन।
सेकेंडली, अब अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंटेबल दिखें ड्यूरिंग ऑफिस, ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, सो आपको यूज़ करना चाहिए एक जेली टिंट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्लश और टिंट में क्या फ़र्क होता है, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लश एंड अ टिंट। सो बेसिकली ब्लश क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाउडरी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी होते हैं, और जो आपका फेस है ना उसको बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी टेक्स्चर दे देते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडरी जो ब्लश होते हैं वो बहुत फेक लुक देते हैं, बट जो हमारे टेंटेड टेंट्स होते हैं जेली बेस, ये क्या करते हैं कि हमारी स्किन को एक नेचुरल सा सन किस्ड इफेक्ट देते हैं, प्लस टोटली इतने नेचुरल दिखते हैं कि आप बिल्कुल भी फेक लुक नहीं आती, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा होता कि आपने कुछ भी हैवी लगाया हुआ है। सो आपने क्या यूज़ करनी है, टिंटेड सनस्क्रीन। सेकेंडली आपने क्या यूज़ करनी है, जेली बेस्ड टिंट्स। अच्छा, तो जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, दीवास हैं, ऑफिस गोइंग वुमेन्स हैं, उनको मैं यही चीज़ प्रेफर करूँगी कि टू मच हैवी और डार्क लिपस्टिक्स इट्स नॉट सूटेबल एज अ वर्क इन्वायरमेंट। आपको चाहिए आप ऐसे शेड्स यूज़ करें जो कि बहुत सॉफ्ट हों, बहुत लाइट हों। सो जो एक बेस्ट एक प्रो टिप मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, वो ये है कि आपको चाहिए वही जेली टिंट। अब आपने क्या करना है, उस टिंट को आपने अपने चीक्स पे यूज़ करना है, एंड देन आपने उसे अपने लिप्स पे यूज़ करना है, और उसे यूज़ करने के बाद आपको ज़रूरत है एक लिप शाइनर की, ठीक है। आपने उसे अपने लिप्स पर डेली बेसिस पर लगा लेना है, एंड ट्रस्ट मी यू विल सी कि जस्ट 2 to 3 प्रोडक्ट से आपकी स्किन कितनी खूबसूरत, कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, और बिल्कुल एक पाउटी इफेक्ट आएगा और बिल्कुल भी फेक नहीं लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ब्यूटी टिप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है, प्लस अगर आप इसको कैरी करते हैं सो यू विल बिकम अ मोस्ट ब्यूटीफुल आइकॉनिक डीवा, अदरवाइज अगर आप नहीं भी करते सो इट्स ऑप्शनल। अच्छा, अब अ लॉट ऑफ पीपल आर स्किपिंग द आई लाइनर, ठीक है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइनर इज अ वेरी important in your eyes, especially when you go somewhere, when you go outside your house, ठीक है। सो आपको presentable दिखने की ज़रूरत होती है, सो उसके लिए आपको eyeliner लाजमी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी eyes को एक sharp look देता है, आपकी eyes को bigger दिखाता है और आपकी eyes को pretty दिखाता है। अब बहुत सारी जो हमारी females हैं वो क्या गलती करती हैं, क्या mistake करती हैं, तो मिस्टेक ये करती हैं कि आपकी आईज हुडेड होती हैं और वो क्या करती हैं, फुल आईज लाइनर लगा लेती हैं। इससे ये होता है कि उनकी जो आईज हैं वो मज़ीद छोटी छोटी दिखने लगती हैं। सो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, हमेशा अपने इनर कॉर्नर से आई लाइनर लगाना है अगर आपकी आईज हुडेड हैं, अगर आपकी आईज नॉर्मल हैं तब भी। सो ये थी कुछ सिंपल सी बेसिक सी मेकअप टेक्निक्स। आई नो जैसा कि मौसम चेंज हो रहा था तो मैंने सोचा कि मौसम के हवाले से, मौसम की तब्दीली के हवाले से क्यों ना अपनी डीवास को थोड़ा सा गाइड किया जाए। होप सो ये ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी टेक्निक्स आपको काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेंगी। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने इन टेक्निक्स को ट्राई किया और आपको ये टेक्निक्स कैसी लगी, और अपना फीडबैक देने के लिए आप 01157100971 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं और वहां जाकर हमें बता सकते हैं। चलिए, काफ़ी गपशप तो होती रहेगी, साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अभी शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। सो सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक और फिर आगे बढ़ते हैं।

के अंदर नए एहसास को, नई तब्दीली को पैदा कर सकते हैं। सो होप सो कि ये कोट आपको बहुत हेल्प आउट करेगा लाइफ के उन सिचुएशंस में जहां आप दूसरों पर डिपेंड कर रहे होंगे, जहां हम ये सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई आएगा आपके लिए, आपकी मदद के लिए। सो ट्रस्ट मी हनी, आप अपनी मदद हमेशा खुद ही करते हो, और चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, जितनी भी बड़ा ट्रॉमा हो, निकलना इंसान को खुद ही होता है। सो ये था हमारा आज का कोट और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर करिएगा। जाते जाते एक बार फिर से बताती हूँ कि radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो आप इस वेबसाइट के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्यूरिंग ड्राइविंग आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी, आपका सफर खूबसूरत और हंसी बन जाए, तो उसके लिए आप फजा डैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। और 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको शो कैसा लगा और आज की रेसिपीज आपने ट्राई की, आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, खुदा हाफिज। आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक मैंने प्ले कर दिया है, जाते जाते इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सुबह प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था। प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया हो। बड़े खूबसूरत सा मैसेज हम तक रिसीव हुआ है कि भाई वेटिंग फॉर योर शो। मुझे नहीं पता था कि कोई इतने प्यार से भी इंतज़ार कर सकता है, बट वही बात होगी ना कि ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है ना वो होती रहती हैं, और फिर वो अचानक वाली हो जाए ना तो इंसान जो है वो हैरान होकर रह जाता है कि यार मतलब इतने अच्छे लोग भी दुनिया में अभी मौजूद है जो सल्लू राज की आवाज़ सुनना चाहते हैं। बाज आ जाए या बाज है, चलें बाज को कंटिन्यू करते हैं। एक तो वो कहते हैं ना कि जब आपका ध्यान दो तरफ हो तो आप बोल नहीं पाते हैं, मतलब एक ही तरफ ध्यान रखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, कभी कभी दो दो तरफ भी ध्यान जो है वो ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही तरफ ध्यान आपको रखना चाहिए। मोस्टली जो है वो कभी ना कभी ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आ जाता है कि आपको दोनों तरफ जो है वो अटेंशन देनी पड़ती है। सो और प्रोग्राम में खूबसूरत सी बात को शामिल करेंगे। हंसें मत, मुझे गुस्सा ना दिलाया करें। कभी तो मुझे गुस्सा आता नहीं है, बट मतलब उन पे बंदा गुस्सा कर भी नहीं सकता जो आपके बहुत अजीज़ हों। सो ओ हो, मेरा दिल है, हम इसको साइड पे ही रख देते हैं और फिलहाल प्रोग्राम में थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। लेकिन आप मुझे अपना ट्रैक भी बता सकते हैं, या आप कोई ट्रैक आप मुझे डेडिकेट करना चाहें सो वो भी कर सकते हैं। किसी प्यारे को कोई पैगाम पहुंचाना चाहें सो वो भी पहुंचा सकते हैं। वेल प्रोग्राम में हमेशा की तरह टॉपिक शामिल करेंगे। एक बड़ी ही प्यारी सी बात प्रोग्राम में शामिल करवाई है। नाम नहीं बता सकती, नाम को पर्सनल रखा गया है, बट बात यह है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी ज़ाहिर कर दो। जी जी, आप बिल्कुल सही समझे, अजीज़ की बात ही हो रही है, बट दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी ज़ाहिर कर दो। सो अब इसके बहुत से ऐसे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर हम किसी इंसान से नाराज़ हैं, किसी से कोई हमारी अनबन चल रही है, सो

जी हाँ, तो बात करते हैं कि थोड़ी सी किसी से अनबन चल रही है, कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत अजीज है, बहुत चाहने वाला है, और मैं यही आपको राय दूंगी कि अगर आपकी किसी एक ऐसे पर्सन से बहस हो रही है, किसी एक ऐसे इंसान से आपकी बात हो रही है जो आपके बहुत अजीज हैं, जिनको आप खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सो उनसे बात करें, उनसे बहस करें, लेकिन उनसे बहस में हार जाएं, क्योंकि अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बात को आपको भुलाना पड़ेगा। तो अब बात को कैसे भुलाना है वो आप पे डिपेंड करता है। इंतज़ार की बात की जाए तो इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है, मुझे ये रात को पता चला है कि इंतज़ार बहुत गंदी चीज़ है यार, बहुत गंदी चीज़ है।

और मैं साथ जो है ना इस चीज़ से चिढ़ती हूँ, साथ इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि मुझे इंतज़ार से बहुत उलझन है। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि इंसान को इंतज़ार करना पड़ जाता है, और फिर इंतज़ार के बाद भी वो चीज़ ना मिले तो बहुत गुस्सा आता है। मतलब बंदा अपने आप को ही दिल ही दिल में कोसने लग जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको मतलब अगले को सॉरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने नहीं कोई भी उम्मीद लगवाई होती अगले इंसान को। खुद ही से उम्मीदें जो हैं वो बना के रखना और उन्हीं वो फिर टूट जाना, वो फिर अगले बंदे की गलती नहीं होती, वो आपकी गलती है, क्योंकि उस इंसान ने आपको उम्मीद नहीं लगवाई। सो आपका भी काम नहीं बनता था कि उसको लेकर किसी भी तरह की कोई उम्मीद उससे लगवाएं या लगाएं। किसी दूसरे को अंडरस्टैंड करने से बेहतर है क्या पहले अपने आप को करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी अहमियत को देखें कि आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। और इसी तरह बात करते चले, बुराई की बात करते, नाराज़गी की बात कर रहे थे। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको नाराज़ होना नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़ौरन से नाराज़गी को ज़ाहिर कर देते हैं। और मेरे ख्याल में इसमें दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है कि नाराज़गी को ज़ाहिर कर देना, वो बेहतर होता है। लेकिन नाराज़गी को मतलब अगर आपसे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई गपशप लगा रहे हो, किसी भी तरह की कोई बात कर रहे हो, मतलब अमूमन लोग होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनसे वो अटैचमेंट नहीं हो पाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहकर भी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि अगला इंसान जो है वो मतलब रोने धोने पर वही उतर आता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नाराज़गी भी रोज है फिर वो ज़्यादा मसला होता है। जब इंसान किसी से नाराज़ हो जाए तो फिर उसकी ज़्यादा याद आने लग जाती है कि अभी मसला बहुत ज़्यादा है। हाँ, मुझे वाकई ही पर्सनली नाराज़ होना नहीं आता। सियाने कहते हैं कि हंस हंस के रहना चाहिए, खुशी खुशी से जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे किसी ने कहा था कि आप शादी के बाद अपने शौक़ जो है वो मत छोड़ दीजिएगा, तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ध्यान दिया कि यार ये बात तो ठीक है, बट वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है कैसा नहीं, वो आपके शौक़ को पूरा करेगा या नहीं, या वो आपके शौक को लेकर चलेगा या नहीं, कैसे किस तरह वो आपको कैरी करता है, वो फिर अगले बंदे पे डिपेंड करता है। आपकी ज़िंदगी में आने वाले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं। सो बट कोशिश ये करें कि किसी को किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना लगवाएं, क्योंकि ये जब टूटती हैं तो फिर बहुत दुख होता है। और मैंने कल एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन बड़ी प्यारी थी, आई डोंट नो कि मुझे अब याद नहीं है, कि थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, भूलने लग जाती हूँ बातों को। नो, शादी की किसी को भी जल्दी नहीं होती, नसीब नसीब की बात है, जिसकी होगी सो होगी। बट बात ये कर रही थी शौक की, और एक पर्सन की बात हो रही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शौक को पूरा रखना चाहते हैं, उसको कैरी ऑन रखना चाहते हैं, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में आने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से लेके चलता है। सो गपशप को जारी रखेंगे, प्रोग्राम में एक छोटी सी फरमाइश जो है वो शामिल करेंगे, बट उससे पहले मेरी भी पसंद का एक ट्रैक है, मैंने वो भी शामिल करना है। इंसान याद उन्हें करता है जो जिनको वो भूल जाता है, और जो भूले ही ना भाई उनको फिर उनका तो एक अलग ही लेवल है ज़िंदगी में। और ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आ तो जाते हैं लेकिन फिर कोई पता नहीं कि आपकी ज़िंदगी उनके मुताबिक चलती है या आपके मुताबिक चलती है। हाँ, मैं भी शायद खुश रख पाए या ना रख पाए।

एयर पॉलिसी के साथ साथ बात को कंटिन्यू रखेंगे, प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल करेंगे और इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात।

सो बीजीएम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने सुना दिया, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपको पता लगता रहे कि सलूराज भैया आई है, आप उनको उनके बीजीएम से ही पहचानें कि सलूराज का प्रोग्राम का बीजीएम है। जी लास्ट सीन का मैं सीन आपको बताऊंगी, बट प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल किया था, बट जिनके लिए किया था उन्होंने सुना ही नहीं भाई, तब हाथ दी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से शामिल कर देंगे, कोई बात नहीं, ट्रैक को सुनते हुए मजा ही आता है। लेकिन उससे पहले बताइएगा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, खाना शाना खा लिया या नहीं खाया? अगर नहीं खाया तो भाई मंगवा लें, क्योंकि मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी हुई है। जिंदगी में पहली बार ऐसा सीन हुआ कि सलूराज को भी भूख लगी है, वरना तो मुझे भूख ही नहीं लगती। बात कर रहे थे हम प्रोग्राम के बारे में, डिस्कस स्टार्ट की थी, बट उसी के साथ साथ मेरे पास एक और छोटे छोटे मैसेज जो है प्रोग्राम में शामिल करवाने का बोला गया, सो मैं उनको करूँगी। बट बात ये कर रहे थे कि प्रोग्राम में मैं आगे एक बात जो शामिल करना चाहती, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब याद आ गया कि जब अपने प्यार नहीं करते गैर प्यार करते हैं ना, तो बहुत तबाहियाँ होती हैं। अब इस बात को गहराई में देखा जाए तो बड़ा डीप मतलब निकलता है, और मेरे ख्याल में इसको रीड करने के बाद, इसको महसूस करने के बाद बहुत मतलब मैं भी थोड़ी सेंटीमेंटी हो जाऊँ, लेकिन दुखी वाला माहौल नहीं बनाना भाई। हम प्रोग्राम को अच्छे से लेके चलेंगे, तभी आप लोग खुश होंगे। मुझे बोला गया था कि भैया बहुत ज़्यादा बोलती हैं और थकती भी नहीं है बोल बोल के, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर इतने प्यारे लिसनर्स आपकी तरह के होंगे तो कौन कम बहुत थकेगा बोलते हुए। अब सुनना भी चाहिए आपको, क्योंकि मैंने ट्रैक आपके लिए ही प्ले करना है। अगर आप आपने ना सुना तो वही बात आगे की तरह, आज तो मुझे होना आता नहीं है। हेलो अच्छे प्रोग्राम इस ट्रैक को शामिल करते हैं, इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ।

और सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में चर्चा में क्या था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और उसी के साथ साथ प्रोग्राम में गपशप को स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि गपशप को तो आपके साथ करनी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ बैकग्राउंड बीजीएम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ताकि आप हमें भी सुनते रहें और साथ साथ ट्रैक भी इंजॉय करते रहें।

0: सर, हमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा मैसेज रिसीव हुआ है।
1: से तेरे परेशान है, मेरा सब कुछ तुझे पे फिदा है, क्या है जो तुझसे छुपा है।
0: I'm so sorry, थोड़ी बहुत सीटियां भी सुननी पड़ जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बात कर रहे थे छोटे सा मैसेज प्रोग्राम में जो है वो शामिल हुआ है, और ये मैसेज जो है वो कुछ इस तरह से है कि दूसरे इंसान का एकदम से अजीज हो जाना, इसका मतलब सलूराज को इसका मतलब पता होता था, सलूराज इधर थोड़ी ना होती भाई।
1: दिल भर जानिया बेईमानिया यूं ना सता तू।
0: बट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर उसके हवाले से मुझे बताओ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कुछ इस तरह से कि अगर दूसरा इंसान जो है वो आपका एकदम से अजीज़ हो जाए, सो इसका ये मतलब है कि कोई शख्स अचानक से आपके दिल में बहुत करीब, मतलब एकदम से करीब वाला ठा करके लग जाता है। सो उसकी अहमियत आपकी नज़र में बढ़ जाए और आप उसके लिए जो है मोहब्बत, एहतराम और एक अलग ही लगाव उसके साथ महसूस होने लग जाए आपको। सो इसकी वजूहात होती हैं, इसकी बहुत सी वजह होती हैं कि हम इंसान को किस वजह से इतना मतलब उसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसकी बहुत सी ऐसी वजह, और मेरे ख्याल में वो वजह जो है मुझे मालूम है कुछ कुछ। ये कैफियत जो है ना अमूमन उस वक्त पैदा होती है जब इंसान जो है, जब हम किसी शख्स की शख्सियत, अहलाक, रवैये या उसके खलूस को देखकर उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं, उस इंसान की खूबी को देखते हैं, और उसी इंसान की खूबी को देखकर हमारे हमारी अपनी ज़ात के ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि मतलब यूँ फील होता है कि हम फ़ौरन से अपने आप को उन्हीं के हाथ में दे दें। बाज़ुकात एक मुख्तसर सी मुलाकात जो है वो भी इंसान का रवैया और इंसान मतलब इंसान को पूरा बदल के रख देती है, और मेरे ख्याल में शायद मेरे साथ भी कुछ हुआ हो, बट मैं आपको क्यों बताऊँ, सारी बातें नहीं बताते, कुछ बातें छुपा के रखते हैं। सो अगर बात की जाए तो किसी शख्स का अचानक अजीज़ हो जाना एक जज्बाती और नफसियाती कैफियत है जिसमें इंसान मुख्तसर वक्त में जो है उस फर्द के साथ गहरा तल्लुक महसूस करता है और उसको उसके साथ अपनाइत महसूस होती है। ये एहसास अक्सर जो है ना वो जज्बात को लेके होता है, क्योंकि बाज़ुकात वो लोग जो बरसों से साथ रहकर भी दिल में जगह नहीं बना पाते, जबकि कुछ लोग जो हैं चंद लम्हे ही आपके दिल में नहायत ही करीब हो जाते हैं और ऐसी जगह बना लेते हैं जो पहले कभी भी नहीं किसी की होगी। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान की जगह होनी चाहिए जिसके बाद जो है आप मतलब जिसके बाद कोई और ना आए। सब ये कहते हैं कि हमें पहली मोहब्बत बनना है, पहली मोहब्बत बनना है। सो मतलब मुझसे ये भी पूछा गया था, शायद कल का क्वेश्चन था ये, कि इंसान जिसको अपनी पहली मोहब्बत के दुख सुना रहा होता है उसको मोहब्बत फिर दूसरी उसी के शादी क्यों हो जाती है। बस मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, अब होती होगी, या मेरे ख्याल में मोहब्बत वो होती है जिसके बाद कोई मोहब्बत नहीं होती। सो कोशिश करें कि किसी की पहली, दूसरी, तीसरी मोहब्बत नहीं बने। सब कि यही ख्वाहिश होती है कि वो इंसान, मतलब लोगों की मैंने यही ख्वाहिश देखी है कि वो पहली, दूसरी मोहब्बत, मतलब पहली मोहब्बत बनना चाहते, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंसान की पहली आखिरी मोहब्बत बनूं, और ऐसे ही होना चाहिए, उस इंसान की आखिरी मोहब्बत बनो जिसको आखिरी मोहब्बत बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? जिसके बाद इंसान को कभी भी दोबारा किसी से मोहब्बत ना होए हो आपके मतलब उस तरह से ना हो जिस तरह से उसको आपसे, उस तरह की उसे किसी और से ना हो। सो इसीलिए कोशिश करें कि आप इंसान जो है ना वो एक दूसरे को इज्जत दें और एक दूसरे की ज़िंदगी में अपने आप को अजीज रखें, लेकिन उस हद तक जहाँ तक आपको ठीक लगता है। किसी का अचानक अजीज हो जाना इस बात की भी अलामत होती है कि उस शख्स की शख्सियत ने जो है दिल को किसी खास अंदाज में छू लिया है। लेकिन हमेशा एक ही बात करती हूँ कि जिस रिश्ते में मोहब्बत वाले रिश्ते में इज्जत नहीं होती वहाँ पर रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। सो कोशिश करें कि जिस तब रिश्ता मोहब्बत से नहीं चलता, रिश्ता चलता ही इज्जत से है, और अगर दो पर्सन एक दूसरे की इज्जत करते होंगे तो मेरे ख्याल में परफेक्ट है, मतलब ये चीज़ बहुत परफेक्ट है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर दो पर्सन, मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हो, मतलब एक इंसान अगले इंसान की तब तक सुनता है, मतलब अगर कोई आपको कोई भी बात समझा रहा है तो वो तब तक सुनेगा जब तक वो चुप करेगा, और फिर उसके चुप करने के बाद वो अपनी बात का पलट कर जवाब देगा, बल्कि वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि वो समझाने वाली चीज़ हमें समझा रहा है, वो सिर्फ उस वक्त तक उसकी बात को सुनेगा जब तक वो खामोश नहीं हो जाता, बट जैसे ही वो खामोश हुआ तो पलट के जवाब देना। सो इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अजीज़ है।

जी जी आई नो, मुझे पता है कि आप इज्जत करते हैं, क्यों नहीं करते। मैं वही बता रही हूँ कि रिश्ते में इज्जत का होना बहुत ज़रूरी है, और जिस रिश्ते में इज्जत नहीं होगी वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकता भाई। ओ, तो आपको ये भी याद है कि ये बात 3 दिन पहले हुई थी। वाह वाह, मतलब यार अलग ही खुशी होती है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी आया जो इतने गौर से सुनता है, उसको पता है कि ये चीज़ किस दिन हुई थी। मुझे हंसने के अलावा कुछ भी नहीं आता। एक तो जब बातें ऐसी आ जाए ना प्रोग्राम में, तो वो फिर मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। बिल्कुल, रिश्ते में जो है ट्रस्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। और इज्जत है तो मेरे ख्याल में ट्रस्ट भी है। अगर आप किसी की इज्जत करते हो तो डेफिनेटली उसमें ट्रस्ट भी होगा। लेकिन अगर कोई आप यकीन करता है तो अंधा यकीन जिसको कहा जाता है ना, अगर कोई आप अंधा यकीन करता है ना तो उसको अंधा ही ना समझने लग जाए। बिल्कुल भी अंधा मत समझे उसको। बट मुझे इतना पता है कि कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, कुछ लोग खामोशी से

0: उनको कैसे लेकर चले, या फिर वही बात आगे उम्मीद लगवाना बहुत गलत चीज़ है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा किसी के साथ, अगर मेरी किसी के साथ अटैचमेंट है भी, तो मेरी वजह से उसको किसी तरह की भी कोई, किसी तरह का भी कोई दुख ना पहुँचे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी के रोने की वजह ना बनूँ, अब बस सबकी खुशी की वजह ही बनती रहूँ, क्योंकि मैं खुद बड़ी खुश मिजाज हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अगलों को भी खुश ही रखूँ। लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कहानी में गलत ज़रूर, बुरे ज़रूर होते हैं। सोवल बात को कंटिन्यू रखेंगे, बट मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश भी मौजूद है और मुझे बोलने में थोड़ी सी जो है वो दिक्कत भी महसूस हो रही है। एक तो मौसम भी ऐसा हो जाता है कि अचानक से तबीयत का पता भी नहीं चलता इंसान की तबीयत कब से कहाँ, मतलब कैसे ख़राब हो जाए। गला थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ बोलूँगी, क्यों नहीं बोलूँगी।
1: छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रखा।
0: सर उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी ने भी मेरी बातों पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका। सो पंजाबी ट्रैक की फरमाइश भी मौजूद है, अगर बोलते हैं तो पंजाबी वाला पहले शामिल कर देते हैं या फिर अपने लास्ट सेगमेंट में जो है पंजाबी ट्रैक को शामिल करें।

जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पंजाबी ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, सो पंजाबी ट्रैक को शामिल कर दिया। अभी रिसेंटली इश्का दे लेखे मूवी आई है और इस मूवी का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मूवी भी बहुत मजे की, अभी मैंने देखी नहीं है बट मैंने इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं ना वो देखे हैं, सो आप इस मूवी को भी ज़रूर देखिएगा। सो स्टे ट्यून, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलू राज। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी वो बात कर रहे थे, वो कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं ना स्टूडियो में, तो फिर वो मुझे उनके साथ थोड़ा सी गपशप लगानी पड़गी। सो काम की ही बात करी थी, सलू राजा गप्पे शप्पे नहीं मारती सिर्फ आपके अलावा। अब प्रोग्राम में जो है मैं बताने आई थी कमर्शियल ब्रेक खाया होने वाली है, कमर्शियल ब्रेक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुंदरी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से।
1: कितने चांदनी नु लग गया फिर सारे अंबरां च जिक्र असां दे फैलणे के चांदने ता अपने सजाउणे दरबार।
0: सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी। कमर्शियल ब्रेक उस पर रही आपसे मुलाकात। स्टूडियो की डायल मशीन पे वक्त हुआ जाता है पूरे के पूरे एक, यानी कि यार एक भी बज गया पता भी नहीं चला। सुबह उसी के साथ साथ मुझे कहा गया कि कोई ऐसा जुमला जो मुश्किल वक्त में आपको संभाल ले। तो मतलब जुमले तो ऐसे बहुत है मेरे पास, बट मेरे ख्याल में मेरी अपनी राय ये है कि मुश्किल वक्त में ज़रूरी नहीं है कि कोई जुमला ही काम आ जाए। अगर कोई इंसान आपको सीने से लगा ले, गले से लगा ले, आपका हाथ थाम ले, तो ये काफ़ी होता है। जुमले बोलना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में। खामोशी वैसे भी बहुत कुछ बोल देती है, तो मेरे ख्याल में जुमलों की जरूरत नहीं बनती। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मेरी ये वाली राय गलत है, तो मैं आपको जुमले भी बता देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है।

यकीन है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में कोई राय भी देनी चाहिए, मेरी पर्सनली जो राय थी वो इस तरह आती थी कुछ कि अगर कोई इंसान आपको सीने से लगा ले, चुप करके आपका हाथ पकड़े, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई वजह नहीं, मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी आपको संभालने के लिए उस बुरे वक्त में जिसमें आपका साथ किसी ने नहीं दिया। और मजे की बात बताऊँ आपको, मुश्किल वक्त में कभी भी कोई अपना साथ खड़ा नहीं होता, हमेशा मैंने भी गैरों को ही साथ खड़े हुए देखा है। और मुझे अपना से ज़्यादा जो है ना वो गैरों पर ही यकीन है, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही लगता है कि जहाँ पर आपके अपने साथ नहीं देंगे वहाँ पर गैर आपका साथ देगा। सो मुश्किल वक्त है, गुजर ही जाएगा, जैसे इससे पहले मुश्किल वक्त और भी गुजरे हैं, सो ये भी गुजर ही जाएगा। देखो देखो कौन दिंदा हल्ला शेरियां के, बस ये याद रखें कि अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। सो हिम्मत बिल्कुल भी मत हारे, मुश्किलात जो है वो इंसान को तोड़ती नहीं है बल्कि इंसान को मजबूत कर देती हैं। और मेरे ख्याल में फिर हमें, मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आनी चाहिए जिनके बाद इंसान जो है वो मजबूत हो जाता है। क्या कहते हैं आप, मतलब ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब मेरी राय ये है कि ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में अगर इस तरह की कोई, किसी तरह की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसके बाद मजबूत हो जाता है, ना कि उसके बाद वो अकेलापन, मतलब अकेला रहना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ऐसे, सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी शख्सियत कैसी है, वो किस मिजाज के हैं।

सुन ले तारे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब जो ऐसे ठोकर खाने के बाद, धोखा खाने के बाद जो है ना, वो कामयाबी की राह पर चल पड़ते हैं। और मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनली जो मतलब एक आइडिया ना, मतलब पर्सनली ये ख्याल है कि इंसान अपनी जिंदगी में तभी कामयाब होता है जब तक उसको जिंदगी में कहीं ना कहीं से ठोकर ना लग जाए। सो मैं अभी उस तरह से कामयाब नहीं हुई क्योंकि मुझे अभी ठोकर नहीं शायद लगी। लेकिन अब मैं जान मुझके ठोकर अगर खाना चाहूँ, मतलब वो मैं, मतलब दिमाग कुछ ऐसा है, वो फंसी मजाक वाला, तो वो मैं मस्तियाँ करती रहती हूँ, कभी किसी चीज़ के साथ टकरा दिया, कभी किसी चीज़ के साथ टकरा दिया कि शायद मुझे अब ठोकर लग जाए तो शायद अक्ल आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे साथ। संग तेरे रहना ख्याल बन के, आके मुझे तुझे तरकीब कोई ना। शायद मैं भी, कुछ लोग मुझे सुनते हो कहते हो यार कैसी पागल बेवकूफ लड़की है, लोग डरते हैं इस चीज़ से, और ये कह रही है कि मुझे लगे ठोकर। बट आप कामयाब हो गया तो क्या मैं नहीं कामयाब हो सकती? मुझे भी तो ठोकर लगनी चाहिए थोड़ी सी। बट वो ठोकर ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद मैं जिंदगी में खुद को संभाल सकूं।

फेक तो लोग आ जाते हैं यार, मुझे बातें भूल जाती हैं, मुझे पता ही नहीं होता मैंने बात को कहाँ पे छोड़ा था। बट आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने बात को कहाँ पे रोका है, फिर मैं उसको वहीं से कंटिन्यू कर देती हूँ। What you mean by single बंदा, मतलब मुझे कुछ समझाएंगे इसके बारे में? मतलब मुझे एक टेक्स्ट रिसीव हुआ है, सिंगल बंदा, मतलब कुछ मुझे कुछ पूरी मतलब डिटेल भी बताया ना कि मुझे इसके बारे में क्या डिस्कस करनी है। हल्ला, रोना नहीं है अभी, मुझे रोने से बड़ी बहुत डर लगता है, मेरी वजह से कोई रोए तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इस चीज़ से जो है ना थोड़ा सा एहतियात करें, मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मुझे फ़ौरन से बता दें। क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे आपको एंटरटेन करने आते हैं, ना कि आपको दुखी करने। सो दुखी वाला तो माहौल बनाना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा प्रोग्राम में, ताकि मैं आइंदा उस चीज़ का ख्याल रखूँ, उस चीज़ को बोलने में जो है वो थोड़ा सा संभल के बोलूँ। अच्छा अभी मुझे इस सॉन्ग की समझ आई कि मैं तेरे कल में हूँ आज में हूँ, मतलब मैं कल में भी हूँ और आज में भी हूँ। सुन ले मुझे सैयारा मूवी, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है यार, ये मूवी बहुत मजे की है, मजे की भी है और थोड़ी सी सैंटी वाली भी है, मतलब सैड वैड वाला माहौल भी है। बट अब मुझे इस मूवी का सिर्फ मेरे ख्याल से यही ट्रैक पसंद है, पता नहीं क्यों।

पर मेरा बहुत दिल करता गाना गाने का, बट मैं नहीं गा सकती क्योंकि आप मुझे ज्यादा देर तक सुन नहीं पाएंगे। मेरे अपने घर वाले मुझे इतना तंग होते हैं, यार तुम कितना बोलती हो, कितना बोलती हो, बट उनको क्या पता कि यार इधर बोलना मेरे लिए कितना अच्छी बात है, मतलब मुझे इधर लोग कितना पसंद करते हैं। एक इंसान का काम ही जब बोलना हो तो मेरे ख्याल में फिर उसको कोई बुरा भला ना कहे तो अच्छा ही है। अच्छा मैं खुद ज़्यादा नहीं बोल रही क्योंकि मुझे ये ट्रैक पसंद है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा सुनती भी रहूँ साथ। लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आपने मुझे अपने मनपसंद ट्रैक के बारे में नहीं बताया। अब बहुत गंदी बात है यार, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे ट्रैक बताएंगे कि ट्रैक लगाओ, लेकिन मैं लगा ही नहीं पा रही क्योंकि आप मुझे बता ही नहीं रहे। मैं गुनगुनाई ना, वही तो आपने भाग जाना यहाँ से।

सवाल बात को कंटिन्यू करेंगे राकर, मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश मौजूद है, मैं काफ़ी टाइम से उसको प्ले करना चाह रही हूँ, तो मेरे ख्याल में उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं और फिर इसके इस बार आपसे करते हैं मुलाकात। मुझे गपशप भी करनी होती है लेकिन आपकी फरमाइशों को भी पूरा करना होता है, सो मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, ट्यून करके रखना है फजा 97.1 FM एंड डैब को।

सो वेल क्या चैट में यार ख्वाहिशों की बातें हो रही हैं. मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई अभी तक. वो फिर कहते हैं ना कि सबको सब नहीं मिलता, मतलब जिंदगी में कुछ चीज़ें जो है ना वो हंस के खोनी पड़ती हैं. क्योंकि काश जो है अगर जो है वो जिंदगी में हमेशा रह जाता है. सो वो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में बड़े ही प्यार से ट्रैक की फरमाइश मेरे पास आई है और मैं उस ट्रैक को ज़रूर प्ले करूँगी. वो ट्रैक मुझे भी बहुत पसंद है. आपको गा के बताऊँगी कि ट्रैक है कौन सा, मतलब मैं आपको गेस नहीं करने दूँगी. मैं उसका शुरू का जो है वो लिरिक्स शायद मैं भी शर्म जाता हूँ. पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, यार क्या ट्रैक है. सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार. फरमाइश बड़ी ही खूबसूरत से बंदे की आई है और मैं उनकी फरमाइश को टाल भी नहीं सकती. सही, सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार.

फिर आप साथ होंगे तो यार दिल कैसे संभलेगा भाई, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, आपको खुद मतलब अकल होनी चाहिए। बट मजाक कर रही हूँ, प्रोग्राम में शामिल किया था बड़ा ही मज़ा सा ट्रैक, बड़ी खूबसूरती फरमाइश पे, बड़ा ही प्यार सा ट्रैक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। सो सब साथ होते हैं, बस वो वक्त जो है ना वो इंसान को साथ रहने नहीं देता, बट कोशिश ये करें कि वक्त से लड़कर अपनों को अपने साथ रखें, क्योंकि वक्त बहुत जालिम है और इस चीज से खुद ही लड़ना पड़ता है। बट मैंने ये सोचा कि आगे मैं एक बात करी थी प्यार वाली, कि आप इंसान की आखिरी मोहब्बत बने। सो मुझसे मतलब सवाल किया गया था कि इंसान को उसकी पहली मोहब्बत, मतलब मोहब्बत जिस इंसान को अपनी पहली मोहब्बत का दुख सुना रहा होता है उसे दूसरी मोहब्बत हो जाती है, आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, लेकिन अब कोशिश ये करें कि किसी को भी इस चीज़ की स्टोरी मत सुनाएं, खासतौर पर उसको जिसको देखकर आपको लगे कि मे बी शायद कोई अटैचमेंट होने वाली है, क्योंकि इंसान अंदर अंदर से कूड़ता रहता है और कूड़ कूड़ के जो है ना काम खराब हो जाता है। मतलब कुछ लोग शिकायतें कर लेते हैं, कुछ लोगों को शिकायत करनी नहीं आती। जिंदगी में समझने वाला इंसान ही चाहिए होता है, क्योंकि शिकायत किसी को भी नहीं करने आती। अगर कोई ज्यादा मतलब एक दूसरे से क्लोज है, ज्यादा फ्रेंडनेस मतलब उनमें है, तो वो शिकायत कर लेंगे, बट मोस्टली जो है ना मतलब मेरी तरफ से देखा जाए तो शिकायत नहीं इंसान कर पाता। खैर दुखी हमने नहीं होना यार, क्या सलूराज, सबको दुखी कर देती है, खुद भी दुखी हो जाती है। सोवल प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल करते हैं मेरी पसंद का, क्योंकि मैं आप सबकी फरमाइशें तो पूरी करती रहती हूँ, तो मेरा काम बनता है ना अपनी भी एक छोटी सी फरमाइश को पूरा करने का, क्या कहते हैं। इस ट्रैक का बड़े मजा सा लिरिक्स है, और मैं भी शायद अभी आ जाए सुनिएगा आप, मतलब शायद ये नजर का

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

बट इसके लिरिक्स में मजा आइएगा, वीडियो डायलॉग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, कुछ भी नहीं होता ऐसा यार, कुछ भी नहीं होता, सब बातें होती हैं। ये ट्रैक सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट हम इनको सोच के अपना फेरी टेल जो है वो सोच के बैठ जाते हैं, बट ये सिर्फ डायलॉग है और कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ डायलॉग होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। सो फिर बहारा बहारा को सुनते सुनते आगे निकल जाते हैं ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम में आगे होने वाली एक छोटी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी गपशप करती हूँ। हंसे मत, मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा भी नहीं आता है मुझे, तो मुझे तो गुस्सा भी करना नहीं आता वैसे, मतलब ऊपर वाले ने ऐसी शख्सियत बनाई है गुस्सा ही नहीं आता यार। हाँ जेलसी जरूर होती है लेकिन गुस्सा नहीं आता मुझे, लेकिन जेलस नहीं होना चाहिए। जेलस होके ना आप अपना खून जलाते हैं, अगले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी मस्ती में है और आप उनकी टेंशन में हैं। सो और मेरे ख्याल में टेंशन नहीं लेने का बल्कि देने का। ओह हो, फिर डायलॉग आ गया, आपने डायलॉग पे नहीं जाना। अच्छा मैंने आगे इसका ट्रैक शामिल किया था अगर तुम साथ हो। सो इसमें एक डायलॉग है, मतलब वो रणवीर कपूर आई थिंक सो कह रहा है लड़की को कि तुम टाइम पास के लिए नहीं बनी, तुम इश्क के लिए बनी हो। तुझको दिखाऊं मैं जरा, मतलब बीच में कुछ कुछ बातें अच्छी भी होती हैं। सो आइए इस ट्रैक सुनते इसी के साथ जाते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की, जाने में कुछ ब्रेक से वापस आकर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

सिविल प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते हैं हम इंफॉर्मेशन, मीडिया आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मेरे एंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैंने आप तक पहुंचानी होती है, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुंचाते हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का जिन्होंने रेडियो फजा को भी ट्यून किया। प्रोग्राम में शामिल का तरीका बड़ा ही प्यारा है, 01157100971। मेरे पास एक सैड ट्रैक की फरमाइश आई है, सो मैं उसको प्ले तो करूँगी, बट आपको बता देते हैं कि सैड ट्रैक शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि मूड जो है वो ख़राब हो जाते हैं सबके, सबको भी अपना बिछड़ा हुआ जो प्यार है ना वो याद आ जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यार प्यार या दोस्तियाँ भी होती हैं कुछ। सो इसीलिए मैं सैड ट्रैक शामिल करने से थोड़ा सा कतराती हूँ, क्योंकि इंसान को जो है वो अपना गुजरा हुआ टाइम जो है याद आ जाता है किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसका बहुत अजीज हो। खैर मुझसे पूछा गया था, आगे हमने प्रोग्राम में बात शामिल की थी, बट मेरे ख्याल से सुना नहीं शायद आपने, कोई ऐसा जुमला जो मुश्किल वक्त में आपको संभाल ले। तो मेरे ख्याल में जुमले की ज़रूरत नहीं होगी, अगर कोई इंसान आपको चुपके से गले लगा ले, हाथ पकड़ ले या पास बैठ के सिर्फ मतलब कुछ बोले भी ना, सिर्फ पास बैठ जाए पास 5 सेकंड के लिए भी, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी तसल्ली से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। हम सफ़र की यही निशानी होती है कि वो कुछ बोलता नहीं है, बस चुप करके पास बैठ जाता, फिर इंसान को खुद ही फील होने लग जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है।

बट मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटरनेट हमेशा अपना रखा करें भाई, दूसरों का इंटरनेट कभी भी ड्रॉप हो सकता है। सो मांगी हुई चीज़ का मज़ा आता है, मतलब अब मोस्टली अब लोग ज़्यादा इंटरनेट ही मांगते हैं जब मिक्सी कर जाते हैं, लेकिन इंटरनेट का पैकेज अपने यार अपना इंटरनेट होना चाहिए, पैकेजेस अपने रखा करें ताकि आपको किसी भी वक्त जो है वो किसी से वाईफाई का पासवर्ड ना मांगना पड़े। खैर प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल किए हैं हमने, एक और छोटी सी फरमाइश को पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे, दबंग 2 मूवी से लिया गया ट्रैक। चलते हैं इस ट्रैक की जाने, मिलते हैं इसके उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

अभी इस ट्रैक में दगाबाज बोला जा रहा है, लेकिन ये एक दूसरे वे में बोला जा रहा है. मतलब हर हर अल्फाज के दो मतलब होते हैं. सो ये दूसरी तरह का मतलब, एक दगाबाज होता है कि वो धोखा देने वाला, एक दगाबाज बंदा प्यार से बोल रहा है. यार कहाँ से आते हैं डरने वाले लड़के यार, मतलब वैसे लोग कहाँ से मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते. बट मुझे चाहिए भी नहीं कोई भी, क्योंकि मैं खुश हूँ जिसके साथ भी हूँ.

ओहो, इसमें तो मतलब एक छुपी बात, मतलब क्या उसने बोला है तुम्हारी ना में, मतलब मुझे हाई महसूस होती है। वाह यार, मतलब मुझे नहीं, मतलब आपको किसी भी रिश्ते में ना नहीं करनी चाहिए, ना का मतलब हाई होता है यार। मुझे बताइएगा कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो हम वो छोटा सा मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर दें जिसके लिए आपने हमें कहा था।

सो कहा जाता है कि जब आपको किसी से प्यार हो जाए तो उसको बता देना चाहिए। मुझे पता था चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। सो कहते हैं कि मुझे बोला, मतलब मुझे बताया, मतलब मुझ तक बात पहुंचाई गई थी कि बात कुछ इस तरह की थी, कोई ऐसा जुमला जो मुश्किल वक्त में आपको संभाल ले। तो मेरे ख्याल में मैं तीसरी दफा ये बोलने जा रही हूँ। अब अगर आप तक आवाज़ में पहुंची तो मैं आपको मार दूंगी जान से। सो बात ये थी कि मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त में जुमले बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इंसान वो चाहने वाला ख़ास इंसान जिसके होने से आपको सकून मिले, जिसके होने से आपको लगे कि सब ठीक है, वो अगर 5 मिनट या 5 सेकंड भी पास बैठ जाए तो मेरे ख्याल में किसी जुमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरी अपनी पर्सनली राय है, लेकिन अगर आपकी कोई राय हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी बताऊँगी ज़रूर।

इशारा, क्योंकि कभी कभार जो है ना वो बोलना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभार खामोशी भी जो है वो काम कर जाती है, और मेरे ख्याल से उस जगह पे कर भी जाती है जहाँ पर आपको लगे कि सुनने जो मतलब आगे वाला बंदा बैठा हुआ है ना, वो आपकी खामोशी को भी महसूस कर लेगा, आपके होने से उसको ऐसा फील होगा कि मतलब अब कोई भी परेशानी मुझे तंग नहीं कर सकती, अब कोई भी किसी भी तरह की टेंशन मेरे पास नहीं आ सकती। ओके, हम ये बोल देंगे, बट मतलब मेरी जो पर्सनल राय थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि कुछ बोलना ना भी हो, मतलब बंदा कुछ ना भी बोले ना तभी सब कुछ हो जाता है, बट अवल प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक भी शामिल किए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ गपशप भी आपके साथ लगाई जा रही है, अपनी आवाज़ भी आप तक पहुँचाई जा रही है। वक्त काफ़ी कम रह चुका है, एक छोटी सी फरमाइश हमारे पास मौजूद है, उसको पूरा कर देते हैं, और मे भी शायद जो मैं समझ रही हूँ ये ट्रैक वही है जो मैं समझ रही हूँ। अच्छा, इस ट्रैक के बीच में आके लड़की के लिरिक्स हैं, बड़े ही मज़े के, और वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से हैं।

Once again, welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजन 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज. आवाज आप सुन रहे हैं सलूर राज की. सो वल उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में वक्त भी काफी कम रह चुका है मेरे आपके दरमियान और गपशप का सिलसिला भी थोड़ा रह चुका है. ओह हो, ये कौन सा ट्रैक यार शामिल हो गया, मुझे ये ट्रैक बिल्कुल भी नहीं पसंद.

0: सजना। देखा वो गाने में भी कह रहे हैं कि उड़ उड़ाना, ऐवे नहीं है लड़कियों को पापा की परी कहते। प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की, साथ हमारा रहा ठीक हो ठीक 2 बजे तक। वक्त काफ़ी कम रह चुका है, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने पहले भी बोला था कि ये वो वाली गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है। हमेशा की तरह वही हाल है कि जाने का दिल नहीं करता, बट एक बार दोबारा से आने के लिए जाना तो पड़ेगा।
1: कैसा है खुमार होया, जीना दुश्वार होया।
0: सवाल साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाएगा। हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपने भी ट्यून करके रखना है 97.1 FM को। प्रोग्राम में साथ देने का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका एक बार फिर से बताए देते हैं, 1157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। सवल अभी के लिए आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। सो कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। छोड़े जाती हूँ एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

0: इश्क तुम ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.
15: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Faza 97.1 FM.

हेलो नोटिकम, उम्मीद है आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब 3 होने वाले हैं और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM, जहां मौसीकी तफरी और मुस्बत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। कहते हैं अच्छी मौसीकी सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। अगर आप इस वक्त दफ्तर में हैं, गाड़ी चला रहे हैं या घर पर आराम कर रहे हैं, तो अपनी पसंदीदा दोनों के साथ इस दोपहर को मजीद खूबसूरत बनाइए। अपनी पसंद को टेक्स्ट में लिखिए, अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ हमें इरसाल कर दीजिए। हम आपके नाम के साथ, आपके शहर के नाम के साथ आपकी तजवीज़ को प्ले करेंगे। आज की हल्की फुल्की बात है कि ज़िंदगी में कभी कभी इतना संजीदा हो जाते हैं कि सनसना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, मुस्कुराहट मुफ्त है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आज कम अज़ कम एक शख्स को मुस्कुराने की वजह ज़रूर दीजिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक। जिंदगी में कभी भी इतने संजीदा हो जाना चाहिए कि दूसरों के दुख दर्द महसूस हो आपको। आज की दोपहर का एक सवाल है कि अगर आपको मौका मिले कि आप एक दिन के लिए दुनिया के किसी भी शहर में जा सकें तो आप कहां जाना पसंद करेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, हमें टेक्स्ट कीजिए 0115710971 पे। अपने जवाब हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कभी अपनी जिंदगी का मुआवजा दूसरों से ना करें। हर शख्स का सफर अलग होता है। कुछ लोग जल्द मंजिल तक पहुंच जाते हैं, कुछ रास्ते में बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। असल कामयाबी यह है कि आप कल से आज बेहतर हो। अब वक्त है एक जबरदस्त गाने का जो यकीनन आपके मूड को फ्रेश कर देगा। गाने के बाद वापस आएंगे कुछ दिलचस्प मालूमात, मज़ाही लम्हात और आपके पैगामात के साथ। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, जहां हर लम्हा एंटरटेनमेंट से भरपूर है।

कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए अपना समझ लेते हैं, लेकिन किस्मत की किताब में उनका किरदार चंद सफहात तक ही लिखा होता है। जब वो चले जाते हैं तो लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो, सांसें बोझ बन गई हों और मुस्तकबिल धुंधला सा नज़र आने लगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, किसी एक शख्स का चले जाना आपकी पूरी कहानी का अख्तिताम नहीं होता। आपकी जिंदगी किताब अभी बाकी है, अभी बहुत से ख्वाब पूरे होने हैं, बहुत सी कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है।

अगर आपका दिल टूटा है, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, अगर आप आज भी किसी की याद में खामोश रहते हैं, तो आपने आपको सजा मत दीजिए। वो शख्स आपकी ज़िंदगी का एक बाप था, पूरी किताब नहीं। अपनी ज़ात को इतनी अहमियत दीजिए कि आपकी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर मुनहसर न रहे। शायद आज का दिन मुश्किल हो, शायद रात लंबी लगती हो, शायद यादें बार बार सताती हों, लेकिन यकीन मानिए वक्त का पहिया रुकता नहीं। एक दिन आएगा और जब आप इन्हीं लम्हों को याद करके मुस्कुरा रहे होंगे और कहेंगे मैंने सोचा था कि मैं टूट गया हूँ, मगर असल में मैं मजबूत हो रहा था।

ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक सॉन्ग सुना देते हैं कि मोहब्बत ते दिल चूं पुले के नहीं जान दे। आरिफ लोहार पाकिस्तानी मारूफ गुलकार हैं, उनका ये गाया हुआ सॉन्ग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी बड़े शौक से सुना जाता है। आइए प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Bigger, bigger and better, better the radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Station with the
8: best music.
9: Best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: Fazana 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
15: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि वो हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: You are listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
10: डैब। यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: radio station for people who love music.
1: Buzz on 97.1 FM.

0: कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

Better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंद।

0: पिज्जा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
2: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
8: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
8: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
8: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
8: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी वाइब भी।
9: You are listening 97.1 FM.

Better. The radio station for people who love music. 107.1 FM.

कोई से तुमको देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Hazza 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
11: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are...
12: Fazan 97.1 FM।
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore, only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक।

0: गली है, रस्ते पे खड्डे है, बैलों के अड्डे है, सड़गले मसले है, तू हंसले, कंगन किधर है बेलाला?
1: सर सर
2: You're listening to 97.1 Fanta.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।

0: looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट

0: और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
0: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
0: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
1: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी वाइब भी।
2: You are listening 97.1 FM.